दिल में बसने वाले कुछ लोग दूर होकर भी हर पल पास रहते हैं। दिल में बसने वाले कुछ लोग दूर होकर भी हर पल पास रहते हैं। वक्त गुजर जाता है, यादें नहीं जाती, कुछ गीत भी ऐसे ही खास रहते हैं। कितलो सुंदर गीत मित्रो, कितलो मधुर एहसास, आ गीतना बोल लख्या हता गुलशन बावराए अने सुंदर धून हती आजना कार्यक्रमना मुख्य नायको कल्याण जी आनंद जी नी अने फिल्म हती हाथ की सफाई। मित्रों आप आनंद ले रहा छो 106.1 FM ना माध्यम द्वारा प्रसारित आकाशवाणी भारत भवन ना जीवन प्रसारण नो साथ आपी रहेला सर्वे श्रोताओने नीलिमा बुलाना स्नेह सबर नमस्कार। मित्र कार्यक्रमना आगला भागमा पर आवाज अमर गीतो आपनी राह जोई रह्या छे, पर हाल तो समय थई गयो छे आ सप्ताहना समाचारो जाणवानो। तो प्रस्तुत करू छू मुकेशभाई जयरामने आ अठवाडियाना નવા જૂનિયો સાથે।